Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदिऊ, गर्मीबाट बचाऊ।
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

0: तपाईं अहिले हेलोम्बो एफएम 89.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो धर्मी कदे ग्याम रंग ल सल्ला किन्सुको जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्यापुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अङ्क 47 रंग निदा स्वागत मुला न वियोग तामाङ रंग लुई रिक कादे पटक थारेङ निवारी से मुसुमुला तिगा रंग रंगला माई कादे प्राप्त लाभ्रे से मुसुमुला रंगला भविष्यला सफलता निर्धारण लाभ याकर्खी महत्वपूर्ण कुञ्जी हिन्बा रंग से परमेश्वर यम सल्लाह किन्ना ताला विवा हिन्बा थेन दे थे सल्लाह दा बोर्सी रंग तिगा परमेश्वरला छनोट लसुबा विवा हिन्बा हितोपदेश 13:20 बुद्धिमान देन ब्रह्म बुद्धिमान नोन तामुला तसै मूर्ख गरेर संगत लासेला नोक्सानी भोग्दिमुला रंगदी मध्ये लानन्द थामुलकी

0: फुटबल खेल कदेरी रेफ्रीले भूमिका निर्वाह लमुला रङदा सुधार लबरी नै प्रयोग लब याकर्गी प्रभावकारिता विवाह न भन्द लान अनुभव तबा रेफ्री ग्याम सल्लाह किन्बा हिन्बा वर्षौं ग्याम नै थेनी गदेन बहुमूल्य सुझाव किन्बा मुला सुसे गद गाला रेफ्री शिवसे ज्ञान मात्र सुधार लबरी हम्बा सो मुला चु सिकाइला तरिका से आत्मिक ग्लारे यन लानन जानलासी गेला मुला यदि रंग आत्मिक रूपी बरफ लावरी सेम मुसुमुला विषम रंग से रंग भन्दा लाना आत्मिक रूपी परिपक्क निगदे देन दुई बिताप लबा हरेक अवसर किन्दोला थेनी गदे ग्याम रंग से हमसुला सिकापला सुगो एलिसा से एलिया देन चुरंग बन लजी दुई राजा दुई अधेला दुई थेली छ एलिसा से एलिसा द बिजी थेली छ एलिया से एलिसा द बिजी ए चुनन च्यु परम प्रभु सिंह आदा थेलावरी पुसुबा मुला तस एलिसा से बिजी परम प्रभुला लुई देन रंगला लुई द सफत चाजी ना बिला ना रंग द खासलारे थेनी गदे बिथेलरी फ्याजी एलियाला मनोवृद्धि चुरंगमा मुबा थे एलिया ग्याम हाइमा देउना लानन ताम लोप परि हामला बिसी थेला ङ्यामृचिवरी लानन उत्सु मुबा दुई राजा दुई अदेला एलिसा से एलिया जे रङला गोइलो क्वाङजी थेन थे रेसी यर्दन गान्धीला क्विदा थेसी पुङजी क्वि देवे देन दाहिने क्यार नही बो ताजी थेन दे थेनिगदे छम्बा सारी ब्राजी पारिनिजी जब गा स्यान्दोला सल्लाह पिनमुला गा देन थेनिगदेला लुइला लागिरी चु दृष्टिकोण तामुला गाला गच्छ थेनिगदे दा उदाहरण ग्याम ढोर्याब लबा लोप्पा तालिम पिन्ना देन थेनिगदेला लागिरी प्रार्थना लबा हिन्दा ताकि याकर्गी देन थेनिगदे परमेश्वरला परमेश्वर छम रङला बराबरी गा भन्दा लानन गच्छ बरफ लाबरी हम्ला कथाला लिच्छाला बोरी एलिया निजे चुपटक एलिसासे चमत्कार लजी यदन गन्दिला विभाजन लजी ताकि एलिया सुक्खा सारी पार लजीबा हमला थेसे एलिया ग्याम चमत्कार गदे लोप्पा मुबा दारिन थे थेनी गदेला व्यवहारी उतार लमुला साचिन सेवा हरङ लसी लसेला बिसी लोप्पा नद था मुबा बेनन भन्दा ज्ञान प्रभावकारी तरिका विवा रङला लुइदी परमेश्वरला आत्मज्ञान प्रयोग लाभा गदेदा पछ्याउ लाभा हिन्बा थेन दे थेनी गदेदा उदाहरण ज्ञान रङदा लोपरी अनुमति पिन्बा हिन्बा हितोपदेश बाह्र अध्याय छ दुष्टला वचन से हलाइलाका बगावलावरी ढुक्ती मुला तसै धर्मीला वचन से थेनी गदेदा छुटकारा पिन्मुवा रङला लुइरी लानन निगदे रङमन हरङ लम्बी देन रो आले गदेसे रङला भविष्यला लुइला बारेले बुद्धिमानी सल्लाह पिन्ला यदि रङसे आत्मिक जागरूकताला चाङना तापगादेला ताम ज्ञानसुजी विषम थेनी गदेसी रङदा भाव लाभा सम्भावना तामुला जब रङला लुइला लागिरी परमेश्वरला योजना लोप्पादम हामुला धर्मी मिग्याम सल्लाह मैसुगो रोदेन नुप्प व्यक्तिगत सम्बन्ध मुभा मिग्याम थेनी गदेसी आवश्यक आत्मिक सल्लाह पिन्बा सम्भावना लानन तामुला थेलिचा थेनी गदेला सल्लाह पुष्टि लाभा जिम्मेवारी रङला तामुला तिगचु धर्मशास्त्र देन दिग्वा तामुला प्रश्न रङजीला सुगो तिग रङ चुबारे शान्ति रि मुसुला यसु देन प्रार्थना रि याकृगिन दुई बिताबला सुगो रङनिजे रङनिला जीवन रि परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गई आमेन। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर ग्याम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यान्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे
1: टाइम चेक इट्स 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बजेको छ।